0: Vision FM 88.5 and 101.7 megahertz.
1: भाइयों,
0: अर्जेंटीना
1: का फीफा वर्ल्ड कप का स्क्वाड आ चुका है. ऑनेस्टली मैं तुम्हें बताऊं, जैसे ही मैंने सुना स्क्वाड आया भाइयों, मेरे अंदर ना एक खुशी की लहर आ गई. बिकॉज ऑल्दो अभी करेंटली इस हवा में, इस वातावरण में, वो दिसंबर 2022 के चिल्स तो नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं वो ऑरा है, कहीं ना कहीं वो सेम फीलिंग है. जब अपनी टीम को हम देखते हैं, आप अपना स्क्वाड रिलीज करते हुए, वो एक एक्साइटमेंट, वो एक होप आ जाती है. एंड वी फील लाइक क्या अर्जेंटीना इस स्क्वाड के साथ जाकर अपना बैक टू बैक फीफा वर्ल्ड